डैडी ने भी मेरी वाट लगाई। मैं तो जी जी बोलूं तुझे प्यार करूं, तू तो हो गई है पैरी, तुझे देता नहीं सुनाई।

0: सेंटर।
1: सुनो, आज नहीं, मैंने एकादशी का व्रत रखा है हमारे लिए।
2: तो
1: अरे भगवान बुरा मान लेंगे।
2: अरे तू चीटिंग है यार डोली,

0: अनुरोध गर्दछौँ। साधारण सभा कार्यक्रम हुने मिति, समय र स्थान। मिति 2083 असोज 9 गते शुक्रबार। स्थान, इकाई बनेपा पार्टी भेन्यू, नेपाल टेलिकम पछाडी। उप इकाई, नित्य चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गण, काभ्रे भन्ज्याङ, ज्येष्ठ नागरिक सटल साँगा। समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म।
1: इकाई बानेश्वर कार्यालय परिसर मीन भवन काठमाडौँ। समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म। पाँच खाल इकाई जय श्री कृष्ण पार्टी प्यालेस, अर्पण पार्टी प्यालेस, पाँच खाल। उप इकाई कुन्ताबेसी सेवा केन्द्र, पलाञ्चोक सेवा केन्द्र, बोमलु सेवा केन्द्र, दोलालघाट र आजाद मावि बालुवा। मिति 2083 असोज 10 गते शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म।
0: मिति 2083 असोज 10 गते शनिबार। इकाई ढुङखर्क। स्थान श्री पार्वती माध्यमिक विद्यालय बेथान्चो गाउँपालिका 2 ढुङखर्क। उप इकाई आत्मविकास माध्यमिक विद्यालय बेथान्चो गाउँपालिका 5 च्याल्टी, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बेथान्चो गाउँपालिका 6 भुकदेउ र चन्देवी प्राथमिक विद्यालय बेथान्चो गाउँपालिका 1 थलागाउँ। समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म। इकाई भकुण्डे। स्थान कुटुम्ब रिसोर्ट, नमोबुद्ध नगरपालिका 7 भकुण्डे बेसी। उप इकाई खरे पागो सेवा केन्द्र र भूमेश्वर आधारभूत विद्यालय तिमाल गाउँपालिका 7 कुरुवास।
1: खोपासी इकाई श्री बाल आदर्श मावि खोपासी। उप इकाई बाल उज्जवल मावि नवबुद्ध 10 पुराना गाउँ, लड्केश्वर आधारभूत विद्यालय, कोल भन्ज्याङ, बलथली। कार्यक्रम हुने मिति 2083 असोज 11 गते आइतबार। समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म।
0: इकाई पनौती। स्थान पनौती बेनकोइट पनौती। उप इकाई कुसादेवी माध्यमिक विद्यालय कुसादेवी। समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म। पुनश्च उक्त साधारण सभाबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन कार्यक्रम 2083 भदौ 25 गतेदेखि प्रारम्भ हुने बेहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ। सचिव दोरेन्द्र राज सापकोटा, बिन्दवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पनौती 10, खोपासी, काभ्रे पलाञ्चो।
2: प्राइम एफएममा अबको प्रस्तुति प्राइम न्यूज।